0: फील्डिंग स्ट्राइक।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: टास मॉर्निंग अर्जित तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: हनी सिंगर
1: तनिषा
2: तनिषा यार उसे छोड़ो मैं तो आपकी बहुत केयर करती हूँ ना. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा की जगह के साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान. कुछ तो बहुत होंगे आज आप भी और मैं भी क्योंकि थर्सडे अगस्त 6 है. आज अगस्त 6 में स्पेशल क्या है वो आप बता सकते हैं. इफ एनीबडी इज सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे डू लेट मी नो यू वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ योर स्पेशल डे. बट मेरे लिए स्पेशल थर्सडे है. वीकेंड इज हियर. हम वेट कर रहे थे इसका पिछले सैटरडे से एंड फाइनली आ ही गया.
3: मेरे सोनिया सोनिया वे माई मेरा कितने नहीं हो दिल लगना.
2: सुंदर गाना कबीर सिंह मूवी से एंड देन दिस ब्यूटीफुल वन. आई एम क्रेजी अबाउट दिस ट्रैक.
3: जल्दी है तुम कहाँ पे देखो यहाँ के रास्तों में.
2: बहुत सुंदर गाना है यार.
4: कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नरम नरम कभी सत्य सत्य.
2: मधुश्री जी की शहद जैसी मीठी आवाज में कभी नीम नीम आया है. बात तो बन गई होगी है मैं आ तो गई हूँ. सही बात है. थोड़ा रेट्रो का तड़का भी होना चाहिए एंड देन शेकी शेकी बिकॉज इट्स थर्सडे.
3: एक नंबर तुझे कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय कितनी सुंदर तुझे डिंपल जे पाई जे टेकी टेकी.
2: ये सारे अमेजिंग गाने इस घंटे में लाइन अप है. सोचो चार घंटे में तो क्या कमाल कमाल गाने मैं आपके लिए चलाने वाली हूँ. लेकिन सबसे पहले आपके बारे में बात करेंगे. कल का दिन कैसा रहा आपका? अभी क्या कर रहे हैं? हैव यू लाइक ऑलरेडी लेफ्ट फॉर वर्क? क्या आप रास्ते में हैं? तो सुनते रहिए. जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे अगर ड्राइव कर रहे हैं तो तब मैसेज कीजिएगा. दोज हु आर नॉट ड्राइविंग बट स्टिल रास्ते में हैं आप मैसेज कर सकते हो ना 3311 1063 पर. आ जाओ एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दो और सुनते रहो रेडियो ऑल जियो बिंदास मेरी जान.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Hi guys, this is Bharat Shakti Khurana, and you are listening to Radio Olive.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: परंपरा और सचिन टंडन की आवाज में कबीर सिंह से मेरे सोनिया ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर एंड वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ओवर हियर, तो आइए पढ़ते हैं। अब्रार जी ने गुड मॉर्निंग बोला है और हैप्पी थर्सडे बोला है जी सबको। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है, 3 सिंपल रूल्स इन लाइफ, इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट यू'ल नेवर हैव इट ऑब्वियसली, If you don't ask, the answer is always no. Correct. If you don't step forward, you're always in the same place. एकदम सही बात। और साथ में उन्होंने लिखा है, Don't choose such people who have reached heights. Choose those people who can hold you when you fall from heights, because loyal is better than royal. क्या कमाल बात कर दी है यार, सही बात है। And we obviously need people in our life, every stage of our life, हमें कोई ना कोई चाहिए होता है, not to help us out, just to be there. किसी के साथ खड़े होने से, किसी का एक हाथ आपके कंधे पे होना, तो उससे कितनी स्ट्रेंथ आती है उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। और फिर लगता है कि यार मैं तो कर लूंगा यार, मुझसे क्या, मैं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं इस चीज का, यू नो। एंड नाजनी जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। करेक्ट बात होगी जी। संधू जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया, हैप्पी वाली मॉर्निंग आई है, ठीक है, हैप्पी वाली मॉर्निंग टू यू टू जी। एंड अलॉन्ग विद दैट हरे कृष्णा जी का भी गुड मॉर्निंग है, आलिम इज देयर, गुड मॉर्निंग। बिलाल जी का हैप्पी वीकेंड और गुड मॉर्निंग। वीकेंड का नाम सुनते हैं दिल में मेरी खुशी की लहर दौड़ती है, आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग। सैफुल्ला जी का गुड मॉर्निंग आया है और डॉलर ने मुझे वीडियो भेजी है, प्लीज अपना नाम लिखा करें क्योंकि इनके नाम में सिर्फ डॉलर के साइंस नजर आ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है मुझे देख के, बट आप नाम भी लिख दें अपना। एंड हसन का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, प्लीज विश माई फ्रेंड मजीद लतीफ अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड मेंशन ही इज द बेस्ट ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, दैट इज सो स्वीट। सो मजीद लतीफ जी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे, आई होप यू हैव एन अमेजिंग वन, और बहुत सारा फन कीजिए, पार्टी कीजिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई होप यू हैव एन अमेजिंग यू नो ईयर मूविंग फॉरवर्ड। और ये जो बर्थडे विश है ये आपके ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर हसन जी ने दी है, और अगर केक शेक भेजना हो तो हम खा लेते हैं, ठीक है, रेडियो हॉल के ऑफिस भेज सकते हैं आप। और इमरान का भी मैसेज आया, गुड मॉर्निंग आरजे तनीषा, लाइफ इज नॉट अ म्यूजिक प्लेयर टू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स, इट इज रेडियो, यू मस्ट एडजस्ट योर सेल्फ टू एवरी फ्रीक्वेंसी एंड एन्जॉय वॉट एवर गोज़ इन इट। ओ दैट इज सो ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच इमरान। आसमा का भी गुड मॉर्निंग आ गया है एंड नबील अहमद कुरैशी जी का भी गुड मॉर्निंग आ गया है, और ये फॉर सम रीज़न मुझे नताशा बोलते हैं, मेरा नाम तनीषा है नबील जी, बट मैं नताशा भी एक्सेप्ट कर लूँगी, कोई बात नहीं, चलता है, हो जाता है। फिलहाल भेज रही हूँ कूल सॉन्ग ऑफ द आवर, आप ये मैसेजेस का सिलसिला जो है जारी रखिए 3311106 पर, स्टे ट्यून ऑन रेडियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर। आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

मधुश्री जी की आवाज में साथ में रहमान साहब, बहुत ही सुंदर गाना युवा मूवी से, कभी नीम नीम कभी शहर शहर, ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर, एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट मैरीगोल्ड थ्योरी। मैरीगोल्ड पता है ना, गेंदे का फूल। कहते हैं कि मैरीगोल्ड जो होता है वो जहाँ पे भी उसको प्लांट किया जाता है ना, उसमें ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेफ रखता है, वो बाकी के जो प्लांट्स उसके आसपास लगे हैं उनको पेस्ट से बचाता है और एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है उन सब के लिए, सो दैट वो खुद तो ग्रो हो ही, साथ में उसके आसपास के जो प्लांट्स हैं वो भी अच्छे से हेल्दीली ग्रो हो पाए। सो ऐसे कहते हैं कि अपने आप को आइदर खुद को मैरीगोल्ड बना लो या फिर अपने आसपास की जो सराउंडिंग है मेक श्योर कि वो मैरीगोल्ड की तरह हो, बिकॉज जितने लोगों के साथ हम यू नो डे टू डे लाइफ में एवरीडे जो हमारे एकदम क्लोज्ड वंस होते हैं उनके साथ जो हम वक्त बिताते हैं, हम नोइंगली अननोइंगली उनकी हैबिट्स, उनके ट्रेड्स, यू नो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वो अडॉप्ट कर लेते हैं, हमें नहीं पता चलता। दैट इज व्हाई दे से योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब, राइट? एंड देन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि तुम मुझे अपने दोस्तों से मिला दो, मैं तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें बता सकता हूँ। एंड दैट इज सो ट्रू, हमें नहीं पता चलता हमारी सराउंडिंग का हमारे ऊपर कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा होता है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यू नो सेलेक्टिंग फ्रेंड्स, व्हाइल लेटिंग पीपल कम इन टू आवर लाइव्स। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमें ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, ना कि जो लोग हमारी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, जिन्हें प्लीज करने में आपका सारा वक्त जा रहा है। फिर आप अपने ऊपर काम कैसे करोगे जब आप उन्हें ही प्लीज करते रह जाओगे तो। सो प्लीज सेलेक्ट योर सराउंडिंग, चूज योर सराउंडिंग वेरी वाइसली मेरी जान। मैं तो भाई मैरीगोल्ड हूँ और मेरे लिए आप मैरीगोल्ड हो, समझ रहे हो ना बात को, बाकी देख लो आप। फिलहाल भेजिए फरहान अख्तर की आवाज में रॉक ऑन से तुम हो तो गाता है दिल। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
1: क्या, कैसे?
0: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
1: रोज मिलता है क्या?
0: हाँ रोज मिलता है।
1: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

तनिशा संजू राठौर की आवाज में शेकी भाई थर्सडे फील्स, यू नो इट राइट। यहाँ पे मुझे अतुल जी का मैसेज आया कुछ देर पहले, जो रेट्रो गाना चलाया था मैंने, आप जैसा कोई, सुन के खुश हो गए हैं। वो कह रहे हैं व्हाट एन अमेजिंग डे एंड व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग टू स्टार्ट द डे विद। थैंक यू सो मच। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिशा के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। रेडियो ऑल ऑफ प्रेजेंट्स ब्लैकबोर्ड स्टोरीज। सो आज का जो मेरा सवाल है वो है व्हाट कलर इज अ पिजन। एक पिजन का कलर क्या होता है? जो भी ग्रे ग्रेइश ब्लू जवाब देने वाले हैं, पहले ही बता दूं वो गलत है। अब सोचो और बताओ व्हाट कलर इज अ पिजन, एक पिजन का कलर क्या होता है? देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट बिहाइंड इट, आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दैट विद यू। बट फिलहाल आपके आंसर्स जानने हैं। सो 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर। सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, जिन्होंने स्पाइडरमैन देख ली है उन्हें पता ही होगा इस गाने के बारे में।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Tanisha. Tanisha.
1: You're listening to Radio Alive 106.3 FM. Karanaj lagi awaaz mein toba toba from the movie Bad News. Aur bhai saab, jo Katrinafication hua tha Vicky Kaushal ka isme, kya smooth dance moves. It was absolutely beautiful to see. Aur Tanisha ke saath hain aap Radio Alive 106.3 FM. Par maine poocha tha aapse.
2: Radio Alive presents Black Boat Stories.
1: तो मेरा जो सवाल था वो था कि व्हाट कलर इज अ पिजन, एक पिजन का कलर क्या होता है. मुझे यहाँ पे मैसेज आया पर्पल एंड एज आई सेड कि ग्रे ग्रेइश ब्लू मत बोला बट स्टिल आई हैव गॉट दोज आंसर्स. सो नहीं, नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. सो बेसिकली पिजन्स जो हैं वो काफी कलरफुल बर्ड्स होते हैं. यस, बट वो जो कलर्स हैं उनके वो यूवी स्पेक्ट्रम में फॉल करते हैं और वो ह्यूमन आई को विजिबल नहीं होते. दैट इज़ वाई हम सिर्फ ग्रे और ग्रेइश ब्लू और यू नो उनकी नेक पे जो हमें ग्रीन और ब्लू नज़र आता है वो देख पाते हैं कभी कभी. बट वी कैन नॉट सी ऑल द कलर्स अ पिजन हैज एंड दे आर एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल एंड कलरफुल बर्ड्स एंड माई माइंड वॉज ब्लोन बाय दिस फैक्ट बिकॉज इट ऑल्सो सेज ना कि हम किस तरह से दुनिया को देखते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव, हमें सिर्फ जितना नज़र आ रहा है हम उतने पे बिलीव कर लेते हैं, उसके पीछे क्या है, उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते. और इसीलिए हमारा जो यू नो ओपिनियन है और डिसीजन है और रिएक्शन है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. सो नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ जैसी दिखे ज़रूरी नहीं कि वो वैसी हो, ये वाला पर्सपेक्टिव भी साथ में लेके चलना. Sending a beautiful track, Bevajana, samne aaya karo Khosa Raghu ki awaaz mein. Stay tuned and Jubindas.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: Doctor On Air, brought to you by Naseem Healthcare.
5: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
4: Dr. On Air. Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindaas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
7: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: तनिषा विशाल डिडलानी और अलीसा मेंडोसा की आवाज में अधूरे फ्रॉम द मूवी ब्रेक के बाद ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने इंस्ट्रक्शन दे दी है सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड या फिर कन्फर्म्ड फूड पॉइजनिंग केस उनके पास आ रहा है तो दे हैव टू रिपोर्ट इट इमीडिएटली, और 24 आवर्स के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी यू नो रिपरकशंस। एंड वो इसलिए क्योंकि राइट नाउ बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, इवन इन आर ऑफिस फ्यू पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दैट, क्योंकि यू नो वेदर ऐसा हो रखा है, देन यू गो आउटसाइड एंड यू ईट, और कभी कभी बहुत हैवी खाना खा लेते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है, कभी ऐसा होता है कि बहुत देर से रखा हुआ होता है और वेदर की वजह से वो खाना ठीक नहीं रहता, एंड वी डू नॉट रियलाइज दैट एंड वी ईट दैट। दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग कि देखो ऑर्डर कर रहे हो खाना तो उसको इमीडिएटली खा लो जब वो डिलीवर हो रहा है, अब उसको रख के दो चार घंटे के बाद खाओगे दैट इज़ नॉट ओके एट ऑल इन दिस वेदर, नो प्लीज़। और लाइट खाना खाइए, जितना हल्का होगा ना, मतलब जो ज़्यादा ऑयली ना हो, जो ज़्यादा हैवी ना हो, ऐसा खाना खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें मेरी जान, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा करो बात को, ठीक है? और ये सब करोगे तभी तो आप कह पाओगे आई फील गुड। स्टे ट्यून्ड एंड जय बिंदास।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड गेस व्हाट, iPod इज बैक. यस, जब वो इनिशियली आया था ना, मैंने बड़ी जिद करके अपने भाई से कहा था, उन्होंने फिर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करा एंड देन आई गॉट इट. और फिर उसमें मैंने डाउनलोड कर करके गाने रखे थे एंड देन आई वुड जस्ट सिट एंड कीप लिसनिंग. यू नो, वॉक पे जा रही हूँ, आई यूज टू राइड अ बाइसिकल बैक देन, तो मैं वो बाइसिकल चलाते हुए iPod पे गाने सुन रही हूँ एंड ऑल दैट. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल टाइम यार. एंड अभी फिर इंटरनेट आ गया फोन में, तो वक्त ही नहीं रहता, हम दिन भर डूम स्क्रॉल करते रहते हैं. बट द जेन ज़ीज़ आर नाउ गोइंग बैक टू द ओल्ड वेज एंड इसी वजह से जो सेकेंड हैंड iPods हैं उनकी सेल में ऐसे बहुत बड़ा सर्ज आया है. एवरीबडी वॉन्ट्स दैट, उनको चाहिए कि उसमें कोई भी यू नो इंटरनेट कनेक्शन ना हो, नथिंग, जस्ट गाने हो, हम अपना वक्त अपने साथ बिताएं गाने सुनते हुए. दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग एक्चुअली. बट यार, सुना था मैंने कि लाने वाले हैं, पर उसमें ये स्पॉटिफाई ऐड कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा. आपको क्या लगता है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ऐसे डिवाइसेस पर जो सिर्फ और सिर्फ हमें सुकून और सम लोनसम टाइम देने के लिए है? टेल मी 3311106 पर एंड स्ट्रीट टू रेडियो ऑल ऑफ श्री बिंदास.

लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
2: Hi, this is A.R. Rahman.
3: A.R. Rahman.
2: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
3: Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
4: I'm in number one. Radio Olive. Yeah. Abu Hoggy. Abu Hoggy. Bindas Morning.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
6: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: आसिफ अजहर और जैनब की आवाज में सुपरस्टार से गलत फहमी ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर, और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड मेडिसिन सिस्टम फॉर ट्रैवलर्स। तो जो भी दोहा कतर में ट्रैवल करने वाले हैं उन्हें बता दीजिए कि अगर कोई रिक्वायर्ड प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं जो उन्हें यहाँ पर लाने की जरूरत है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, तो वो कैरी करके लाने के लिए उन्हें एक परमिट की जरूरत पड़ेगी एंड दैट दे कैन एक्सेस थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर कंट्रोल मेडिसिन। जी हाँ, यू जस्ट हैव टू फीड ऑल द इन्फॉर्मेशन, प्रिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है फॉर व्हाटएवर डेज यू आर कमिंग हियर फॉर, और ये आपके लिए चीजें फिजिबल और आसान बना देगा टू कैरी दोज मेडिसिन। एंड तीन दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा क्या स्टेटस है, वेदर इट हैज बीन अप्रूव्ड और इट हैज बीन रिजेक्टेड। सो कीप फॉलोइंग दैट एंड नेक्स्ट टाइम हूएवर इज कमिंग, इफ यू आर ट्रैवलिंग, समबडी इज कमिंग बैक फ्रॉम होम और आपके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं या अपने लिए लेकर आ रहे हैं, तो डू इन्फॉर्म देम कि ये करना जरूरी है, ठीक है? और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, चियो बिंदास। कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
1: क्या, कैसे?
0: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
1: रोज मिलता है क्या?
0: हाँ रोज मिलता है।
1: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

You're listening to Radio All of 106.3 FM, Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. एंड आई गॉट टू नो समथिंग. हमें पता है कि चैट जीपीटी और एआई के आने से पहले हम हर चीज़ के लिए गूगल के पास पहुँच जाते थे. गूगल वॉज लाइक मॉम. हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, गूगल से पूछ लो. मतलब ऑब्वियसली वो ऐसे फिजिकली ला के चीज़ें नहीं दे पाएगा मम्मी की तरह, पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी और एनी थिंग, यू नो, एनी ट्रबल वी आर हैविंग विद एनी सॉफ्टवेयर और समथिंग, गूगल, राइट. तो जब गूगल और यूट्यूब ये सब नहीं आए थे, तब ना निंटेंडो जो गेम है उनकी एक हॉटलाइन हुआ करती थी. यस अगर आप किसी स्टेज पे अटक चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करना है, आप बहुत ट्राई कर चुके हो बट यू आर नॉट एबल टू, यू नो, ओवरकम दैट, उसको पार ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस हॉटलाइन नंबर पे यू कुड कॉल एंड देयर विल बी एन एक्सपर्ट सिटिंग देयर और वो आपको बताएंगे कि आपने वो स्टेज कैसे पार करनी है. हाउ कूल दैट इज एंड हाउ क्रेजी दैट इज. लाइफ हैज चेंज सो मच यार. हॉटलाइन से गूगल पर आए, गूगल से अब हम एआई पर आ गए हैं. ये तो हमें लिटरली बताने के साथ साथ हमारा सारा काम भी करके दे देता है. बट अगेन रिमाइंडिंग कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो तो ही बेहतर है, ठीक है. हमने एआई से काम कराना है, एआई हमसे काम कराए वो नहीं होना चाहिए. ओके मेरी जान. सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक योर वे सुखविंदर सिंह की आवाज में. हॉले हॉले स्टे ट्यून्ड ऑन जियो विंदा.

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: यार वी हैव सीन क्वाइट अ लॉट ऑफ बॉलीवुड मूवीज जिसमें ऐसे होता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है और यू नो एकदम ऐसे पुअर है और बहुत उसको उसके पेरेंट्स मेहनत करना सिखाते हैं, पैसे की वैल्यू करना सिखाते हैं और फिर जैसे ही वो बड़ा होता है पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं बेटा ये तुम्हारी जायदाद है, तुम तो करोड़ों के मालिक हो, हम तो तुम्हें सिर्फ पैसे की वैल्यू सिखाना चाहते थे। ये मूवीज देख देख के जब मैं बड़ी हुई तो मैंने सोचा शायद मेरे पापा भी यही करेंगे मेरे साथ जब मैं ऐसे 18-20 की हो जाऊंगी, पर नहीं किया यार उन्होंने। पर ठीक है, बट देयर इज अ गाय इन चाइना जिसके साथ ये एक्चुअली हुआ है रियल लाइफ में। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। एंड चाइना में एक बंदा 20 साल की उम्र तक ये सोच के जीता रहा कि मैं पुअर हूँ, मुझे तो खुद मेहनत करके सब कमाना है। इवेंचुअली हिज फादर केम अराउंड एंड टोल्ड हिम बेटा तुम तो मिलियनेयर हो, हमारी तो इतनी जायदाद है, हमारे बैंक में इतने पैसे हैं। एंड दैट गाय वॉज फ्लैबरगास्टेड कि भाई क्या, तो बताया क्यों नहीं अभी तक। सेम रीजन दिया उन्होंने कि वी जस्ट वॉन्टेड यू टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्डवर्क एंड मनी, तुम्हें हम ब्रैट नहीं बनाना चाहते थे। यही कहना चाहूंगी, लकी गाय। हैव यू एवर थॉट दिस कि यू नो लाइक बड़े होके ऐसे पापा आएंगे बोलेंगे लो बेटा ये तुम्हारी जायदाद है, तुम तो बहुत बड़े बिलियनर हो और समथिंग लाइक दैट। और ये सिर्फ मेरे ही दिमाग में था, बताएं मुझे 3311063 पर। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Benicia.
1: शिल्परा के आवाज में कियान रेंड देव फ्रॉम द मूवी दो पत्ती ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम दनीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. एंड इमेजिन करो अगर आपकी कार बोल सकती तो क्या बोलती कि भाई तुझे अपने फोन चार्ज करना तो याद रहता है. नहीं तो टीचर्स का वो आइकॉनिक डायलॉग कि खाना खाना तो नहीं भूलते तुम पर होमवर्क भूल जाते हो, वैसे ही कार वुड से कि खाना खाना तो नहीं भूलते तुम लेकिन मेरी सर्विस भूल जाते हो, ये कोई बात हुई भला. तो जी अगर आप भी भूल गए हैं या फिर वक्त आ रहा है नजदीक तो मैं बता दूं यू शुड विजिट वाल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस ऑन सलवा रोड. जी व्हाई? बिकॉज वहां पर आपको मिलेंगे जेन्युइन वाल्वोलिन प्रोडक्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स और साथ में एक्सपर्ट एडवाइस भी और डिजिटल पासपोर्ट फॉर योर कार सर्विस हिस्ट्री सो दैट आप कुछ भी ना भूले, आपको सब याद रहे और पता रहे, फिंगर टिप्स पे हो आपकी कि कब क्या चेंज करवाया था, कब क्या करवाना है, एवरीथिंग विल बी देयर. सो नंबर याद करें 7765 5954, लिखा 7765 5954 इज द नंबर. कॉल कीजिए और पूछिए उन्हें कि मुझे मेरी कार की सर्विस करवानी है, बताइए क्या ऑफर्स है. अलॉन्ग विद दैट अगर आप वहां से इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं तो आपको मिलेगा वाल्वोलिन की तरफ से एक कमाल का तोहफा. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: कुली नंबर वन से हुस्न हसन इन द वॉइस ऑफ चांदना दीक्षित है ना अभिजीत ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। और भाई क्रेजी चीजें होती है दुनिया में। सो देयर इज दिस वुमन, शी क्रिएटेड 25 फेक इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ठीक है। वो अपने हस्बैंड की लॉयल्टी टेस्ट करना चाहती थी फेक अकाउंट्स के थ्रू, और वो 25 में फेल हो गए। सब में, सारे 25 अकाउंट से उन्होंने फ्लर्ट करने की कोशिश करी एंड ही फेल्ड ईच वन ऑफ देम। आई डोंट नो अब उस हस्बैंड का क्या हो रहा होगा, बट क्रेजी। व्हेन दे से ना दैट वुमेन हैव दिस सेंस, दे नो समथिंग इज फिशी, उन्हें पता चल जाता है। एंड दैट इज सो ट्रू यार। दैट इज व्हाई आई से कि अपनी गट इंस्टिंक्ट को फॉलो किया करो, उसको सुना करो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही ही बता रही होती है। बाय द वे आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड यू दैट आस्क फॉर मोर, द यूनिवर्स इज नॉट ऑन बजट। आई जस्ट सॉ दिस कोट अगेन, सो आई वाज लाइक रिमाइंड करा देती हूँ, आपको पता तो है ही है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

कल हो रहा हूँ श्री शंकर महादेवन की आवाज में प्री वुमन, जिसको मैं गाती थी कुरीगुमा। आपके लिए कि अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है सोशल मीडिया पे तो फटाफट से कर लो। radioolive.qa इज द हैंडल, वी कीप पोस्टिंग वीडियोस ओवर देयर, कॉन्टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, आपसे कुछ मिस आउट ना हो जाए बस इसका ख्याल रखती हूँ मैं, इसीलिए याद दिलाती रहती हूँ हर थोड़े टाइम में। सो radioolive.qa इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, एवरीवेयर स्पैम कर दो, मैसेज कर सकते हो जब भी दिल कर रहा है, और चेकआउट करो हमारी पोस्ट, उनसे इंटरैक्ट करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज अस, यू नो दैट राइट, 3311106 पर जब भी दिल में कोई बात है शेयर करना चाहते हैं हमसे, यू नो वेंट आउट करना है, वी आर हियर टू लिसन टू यू। सिर्फ सुनाने के लिए नहीं है, हम सुनने के लिए भी हैं यार। हाँ जी, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसे दिल में बातें रख के हैवी हैवी फील करना डजंट मेक सेंस यार, आओ बात करो, सब ठीक हो जाएगा इवेंचुअली। बाकी बढ़िया गाने तो भेज ही रही हूँ जो ऑब्वियसली चीज़ें ठीक कर देते हैं। फिलहाल आतिफ असलम की आवाज़ में आदत, स्टे ट्यून्ड, बिंदास।

0: छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू
2: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
3: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
3: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
6: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

कलंक मूवी से बाकी सब फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास ही रहना चाहिए। वीकेंड आ गए, एकदम बढ़िया तरीके से इंजॉय करना है। मेरे जाने का वक्त हो गया, अब आपसे मिलूंगी संडे सुबह 6 बजे। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हैव एन अमेजिंग वीकेंड टू योर सेल्फ, और जो चीज़ें पता है आपको उनका ध्यान रखना है, स्टे हाइड्रेटेड, लाइट खाना खाना है और चिल करने का, स्ट्रेस लेने का वीकेंड में, हम वो वीकडे के लिए रखते हैं, ठीक है? सो इंजॉय करो और अपने लिए वक्त ज़रूर से ज़रूर निकाल लेना। बाकी अपना ख्याल रखो यार, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी जान, और सुनते रहो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: नहीं क्यों नहीं, हाथों में हाथ डालकर भी चल सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि मेरे हाथों में जब मैं कुछ भी ज्यादा देर ऐसे पकड़ लेती हूँ तो पसीना आना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होती है। वैसे रोमांस बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, इमेजिनेशन में भी नहीं हो पा रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाई है। एंड इंतजार फिर से खत्म हो गया, फिर से थर्सडे आ गया। मैं जो है कल ही अपने किसी कलीग को बोल रही थी कि मैं तो फ्राइडे को ही सोचने लगती हूँ, फ्राइडे को ही गिनने लगती हूँ कि अगला थर्सडे कब आएगा। मुझे सच में फ्राइडे से बेहतर थर्सडे लगता है, क्योंकि इस थर्सडे में एक उम्मीद होती है कि कल सुबह देर से उठना है, कि कल जो है मैं आराम से अपना जो शो मुझे देख रहा है मैं वो देख पाऊंगी। इसमें एक होप है कि कल का दिन जो है वो सुकून से बीतेगा। एक एनर्जी देता है थर्सडे कि आज जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश कर देते हैं, कल इंजॉय करेंगे। बस लाइफ में इसी होप की तो हमें जरूरत होती है। वैसे अगर आपको याद नहीं है, आपने सुना नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं। एंड यहां पर जो है अमेजिंग गाने आपके लिए एकदम प्लेलिस्ट में लगाए जा चुके हैं, अमेजिंग अमेजिंग बातें जो है वो आपके लिए लिखी जा चुकी है, तो आज हम बहुत कुछ अमेजिंग बातें करेंगे। एंड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी, थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे मौसम की, उसके बाद हम बात करेंगे वीकेंड की वाइब किस तरीके की है, फिर मैं आपको जो है एक मूवी रिकमेंड करूंगी, उसके बाद हम बात करेंगे कि फैशन में क्या कुछ चल रहा है या क्या कुछ नया कल जो है आप ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर बैठ कर आईने के सामने। बाकी अमेजिंग वाला गाना जो है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वेलकम टू द जंगल से। सो वॉल्यूम बढ़ा लो अपनी रेडियो सेट्स का, ये गाना इंजॉय करो और जल्दी से लौट के वापस आओ, क्योंकि बहुत सारी बातचीत अभी करनी बाकी है।
1: Here we go.

0: गाना खत्म, पैसा
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
2: बिंदास
3: टाइम चेक
4: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:11. दैट इज 10:11. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
5: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
6: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
5: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
6: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
7: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954. वैल्वोलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी.
8: Hi, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
1: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से अरमान मलिक की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एफएम। वेलकम, मैं हूँ आपकी कसर सेंचो, आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। अब देखो यार, मैं ना हर थर्सडे को ये सोचती हूँ कि आज अपने कपड़े जो है वो मस्त ऐसे अलमारी से निकालूंगी, जो भी मैंने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर रखे हुए हैं उन्हें आयन करूंगी, एंड कल यानी फ्राइडे को जो है बाहर जाऊंगी और अच्छी अच्छी फोटो क्लिक जो है वो कराऊंगी, क्योंकि यार कदर इतना खूबसूरत है, जहां जाओ वहां एक अच्छा लैंडस्केप आपको देखने मिल जाता है, एक अच्छी यू नो बैकग्राउंड आपको देखने मिल जाता है, बस मन करता है कि कोई यार मेरी फोटो खींचते रहे। लेकिन मैं जब भी ऐसा सोचती हूँ कि यार चलो अब बाहर जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार अभी तो बहुत धूप है, अभी नहीं जाती, थोड़ी देर बाद जाऊंगी। ऐसे करते करते जो है शाम के 7:30-8 बज जाते हैं एंड फिर लाइट जो है वो जा चुकी होती है, तो फिर मेरी फोटो हो नहीं पाती, और लिटरली हर हफ्ते मेरे साथ यही हो रहा है। सो आज वैसे पार्टली क्लाउडी मौसम जो है वो रहने वाला है, दोहा में इस वक्त 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, यानी थोड़ी सी क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये मत बोलना कि कशिश तुमने बोला था कि क्लाउडी रहेगा, पर क्लाउडी तो दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो, मेरा फोन जो है मुझे ऐसा क्यों बताता रहता है, लेकिन बता रहा है तो कुछ तो होगा, कहीं तो होगा। सो अगर आपको क्लाउड दिख जाए तो फोटो खींच के हमें भेज देना 3311063 पर, क्योंकि ये जो स्टूडियो है ना इसमें खिड़की भी नहीं है, मुझे बाहर का कुछ पता ही नहीं चलता है। सो जल्दी से फोन उठाओ 3311063 पर, जरा आसमान की फोटो भेजो मुझे और ये बताओ कि यार सच में क्लाउड्स हैं या नहीं है। बाकी आप लोगों के मैसेजेस जो है उनका सिलसिला शुरू हो चुका है, और अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं किया तो क्या कर रहे हो, 3311063 पर आगे मैसेज जो है वो भेजो, फोटोज भेजो, इंतजार कर रही हूँ मैं। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर इस हीट को बीट करने के लिए। सो जल्दी से गाना एंजॉय करो, फोटो भेजो और फिर वापस आ जाओ, क्योंकि अमेजिंग बातें अभी जारी रखेंगे हम।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।
0: फाल्गुनी पाठक की आवाज में ट्रैक एंजॉय करो, मैं हूँ आपकी कशिश, मेरे साथ स्टे ट्यून्ड और कहते रहो जियो बिंदास।

यार इतने प्यार से बुलाओगे तो मुझे आना ही पड़ेगा ना। आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार, ऐसे बुलाओगे तो मैं आऊंगी, हर बार आऊंगी। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। एटलीस्ट कोशिश तो देखो कर ही रही हूँ। एंड मुझे जो है, मैंने जैसे कहा था कि यार बादल जो है आज रहने वाले हैं, मेरा फोन मुझे बता रहा है कि इट्स पार्टली क्लाउडी। सो क्या बाहर मतलब बादल नजर आ रहे हैं आपको, फोटो भेजिए मुझे। बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे बताया है कि बाहर उन्हें क्या देखने को मिल रहा है। सो मोहम्मद अब्बास जी ने जो है मुझे फोटोज भेजी हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी सा तो दिख रहा है, लेकिन उन्होंने लिखा है बादल है बट बारिश दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आपने फोटो बहुत अच्छी कीजिए, आपकी फोटोग्राफी स्किल्स की दाद देनी पड़ेगी। देखिए अब्बास जी, अब आ जाते हैं। माई नेम इज साहब। ओके, गुड मॉर्निंग साहब जी, कैसे हैं आप? एंड आपने भी फोटो भेजी है एक, और बादल दिख रहे हैं, मतलब वो जो धूप एकदम से पड़ती है ना, वैसा वाला नहीं समझ आ रहा है, लेकिन हाँ ऐसे छनी हुई धूप सी आ रही है। अस्मा जी ने जो है वो कहा है कि अच्छा 3 बजे के आसपास जो है वो कुछ कुछ जगहों पे बारिश हुई थी। गुड मॉर्निंग कशिश, गुड मॉर्निंग अस्मा जी, थैंक यू सो मच, आप रोज हमें मैसेज करती है, बहुत अच्छा लगता है। एंड यार मुझे तो बारिश देखने का जो सौभाग्य है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उसके बाद साइमन जी ने जो है वो भी मुझे गुड मॉर्निंग मेरी कशिश दिखाए। ऑफ कोर्स आपकी कशिश मैं कहती हूँ। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ जी ने जो है मुझे मैसेज किया है, हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच आप सबके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। आप लोग 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, तो अगर आप में से कोई लोग हैं, मतलब कोई है जिन्होंने मैसेज नहीं किया है अभी तक, सो जल्दी से एक मैसेज लिख दो यार, हाय हेलो कर दो मुझे, मेरा वीकेंड जो है वो सफल हो जाएगा। फिलहाल एक बहुत अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इस गाने को इन्जॉय करके आओ। उसके बाद जरा आपके छोटे मोटे स्ट्रेस को दूर भगाने की बातचीत जो है वो हम जारी रखेंगे। यहाँ मैसेजेस आने शुरू हो गए, मैं जरा उन्हें ध्यान से पढ़ती हूँ, उसके बाद गानों के उस पार आपको सुनाऊंगी, ठीक है? Stay tuned, Jio Bindaas.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

0: जी मैं हाँ हरभजन मान तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: किसने कहा वर्कआउट करने से सिर्फ फैट कम होता है, कभी करके देखो स्ट्रेस भी कम होता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मैसेज। आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं, एटलीस्ट कोशिश तो देखो मैं कर ही रही हूँ। अब आप लोगों के मैसेजेस के बीच में मुझे ये रियलाइज हुआ कि काफी सारे स्ट्रेस वाले ऐसा माहौल होता है, सो मैंने सोचा कि एक तीर से दो निशाने क्यों ना लगाए जाएं, तो कुछ ऐसा बताया जाए जिससे आपका स्ट्रेस भी कम हो जाए और आपकी बॉडी भी फिट रहे। सो रोज जो है हर मील के बाद एटलीस्ट 10 मिनट वॉक करने से आपका फैट कम होगा, आपकी बॉडी का डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगा एंड कॉर्टिसोल लेवल भी कम होगा। कॉर्टिसोल जो है वो सबसे मेन चीज़ होती है जो आपके स्ट्रेस से आपकी बॉडी पे जो है एक बुरा इफेक्ट डालता है। सो कॉर्टिसोल कम करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि 10,000 स्टेप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हर मील के बाद एटलीस्ट 10 मिनट वॉक ज़रूर से करना। फिलहाल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।
1: Song of the Hour.

0: Trek. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
1: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:10. दैट इज 11:10. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
0: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. दानातल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुख वाकिफ अलखोर.
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
3: जियो बिंदास.
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे, क्योंकि थर्सडे आ चुका है, कल फ्राइडे है, तो कुछ कुछ होना जो है वो शुरू हो चुका है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। एटलीस्ट कोशिश तो देखो मैं कर ही रही हूँ। अब बहुत सारे मैसेजेस आपके आ चुके हैं, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और जो है वो बताना चाहती हूँ। अब क्या होता है ना कि मैं अभी मेरा बर्थडे आने वाला है जैसे आपको पता ही है, एंड हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों का और भी बर्थडे आ रहा है। सिमन का बर्थडे आ रहा है, तनीषा का बर्थडे आ रहा है, मेरा आ रहा है, हमारे ऑफिस में ऐसे 6-7 लोगों का ऐसे बर्थडे आ रहा है। सो अब वाइफ भी बर्थडे की है, सो सब ड्रेसेस देख रहे हैं, तो मैंने ना ऐसी स्क्रॉल करते करते मैं एक शर्ट पे पहुंची, और वो शर्ट अच्छी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, उस पर जो है काफ़ी सारी गंदगी लगी हुई थी, डर्ट लगी हुई थी, फटी हुई थी, एंड उसका रेट जो था वो इतना ज़्यादा था ना कि हम सब में से ऐसे बहुत सारे लोगों के उनका ईयरली पैकेज भी उतने का नहीं है, एंड एक बहुत लग्जरी ब्रांड है जो वो शर्ट बेच भी रहा है। अब मुझे समझ नहीं आया कि यार ये मेरी आंखों में दिक्कत है इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है या सच में, लेकिन जब मैंने उसमें ऐसे स्टडी करी उसके बारे में तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसी एक पुरानी जो शर्ट है उसे बेचा जा रहा है, एंड बहुत ज़्यादा रेट पे बेचा जा रहा है, बस इसीलिए ताकि ये बताया जा सके कि देखो हम कितने ग्राउंडेड हैं। आप बताइए ऐसे फैशन पे आपका क्या कहना है, एंड क्या आप ऐसे फैशन का सपोर्ट करते हैं? 3311063 ये जो है हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, जल्दी से आइए मैसेज कीजिए, एंड थोड़ी सी देर में मैं आप सबके मैसेजेस जो है वो पढ़ने वाली हूँ जो आपने इतने सारे किए हुए हैं। बादलों की फोटोज जो है वो आ रही हैं, तो आप भी भेज दीजिए 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑल ऑफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: ब्रो व्हाट इज आई लव यू, ये गाओ ना, किले के बारात घर तेरे आऊंगा मैं. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कशिश. शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, एंड आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त जो है वो मैं बनाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ. एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे, आज जाकर जो है सबसे पहले आपकी यू नो फेवरेट आरजे सिमरन की स्टोरी चेक करो इंस्टाग्राम पे, इतनी ज़्यादा कमाल की दिख रही हैं वो. अभी जो है मुझे स्टूडियो में उन्होंने अपने ऐसे दर्शन दिए हैं.
1: अभी स्टोरी चेक मत करना क्योंकि अभी स्टोरी डाली नहीं.
0: अरे पर जब तक ये लोग जो है इंस्टाग्राम खोलेंगे, जब तक जो है आपका नाम टाइप करेंगे, आपको ढूंढेंगे, तब तक तो आप डाली दोगे,
1: है ना,
0: कोई अमेजिंग से गाने पर जो है ऐसे चलते हुए
1: जी,
0: से
1: जी, जी, जी,
0: स्टोरी आएगी. ओ माय गॉड, मेरी आंखें, पता है मेरी आंखों से ना दो दिन से आंसू आ रहे थे.
1: खुशी के आंसू,
0: वो ना लाल हो गई थी, लेकिन आज सिमरन को देख के मेरी आंखों का पानी वापस चला गया है.
1: क्या
0: इतनी खूबसूरत, क्या कहां जा रहे हो
1: आज वीकेंड है ना. अच्छा तुझे मैं मतलब खास बात बताऊं, ये ड्रेस तो चलो ठीक है, मैंने 3-4 बार पहले भी पहनी है, बट जो मैंने जूते पहने हैं उसकी हील पता कितनी है आज?
0: कितनी?
1: 4.5.
0: ओह माय गॉड,
1: मेरे को आज ऊपर की दुनिया बड़ी अच्छी लग रही है.
0: पता है मैं जब स्कूल में थी ना, मैं उतनी हाइट की थी.
1: अच्छा
0: मुझसे ऊंची इन्होंने हील पहनी हुई है. यार क्या प्लान है आज वीकेंड का? यार मतलब मेरी बातचीत छोड़ो,
1: आज कुछ ना कुछ तो करूंगी. अब देखा था ना, एक लड़की जब तैयार होके आ जाती है तो फिर उसको
0: फिर कुछ करना जरूरी हो जाता है. देखो मतलब हम जो है कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, अब हम तैयार हो गए तो अब कुछ करना पड़ेगा.
1: प्लान बनाओ, दोस्तों के कान खाने वाली हूँ.
0: तो जल्दी से जाओ यार, फॉलो कर लो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को, सारे आरजीज को जाकर वहाँ पे आज क्या खाने वाली है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा.
1: पिज़्ज़ा पास्ता,
0: यस, नजर उतरवा लो अपनी इतनी खूबसूरत जो आप
1: लगोगी.
0: मेरा बस चले में नजर बट्टू बन के आपके गले में लटक जाओ.
1: भाई मेरे को ऐसा एहसास होता है कि भाई मैं लाइफ में सिंगल क्यों हूँ, कोई होना चाहिए ऐसी बातें करने के लिए. कशिश बोलते तो फील नहीं आती यार.
0: Yes, exactly. देखो मेरे रहते हुए किसी को ये फीलिंग नहीं आई कि वो सिंगल है, क्योंकि मैं आप लोगों को बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लीमेंट जो है वो देती रहूंगी. आप लोगों को कोई नहीं दे रहा कॉम्प्लीमेंट, मैसेज करो मैं दे दूंगी. मेरे पास कमी बिल्कुल नहीं है गाइस, बट बहुत ही उम्दा खूबसूरत लग रहे हो.
1: बहुत शुक्रिया. बस
0: आपके लिए एक शेर अर्ज कर देती हूँ.
1: ओह माय गॉड,
0: छोटा वाला नहीं बड़ा वाला,
1: ठीक है वो नहीं कर पाऊंगी मैं.
0: कि रूप सुहाना लगता है, चांद दीवाना लगता है
1: तेरे आगे. ओ जाना, ओ माय गॉड, मार्केट में धूम मच जाएगी अगर ये गाना बन गया.
0: रूप सुहाना लगता है, चांद दीवाना लगता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है.
1: हो गया इसका. आगे की लाइन आप लोग बना दो.
0: Yes, आगे की लाइन बनाओ और 3311063 पर जो है मुझे भेज दो जल्दी से. फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना हम सिम को डेडिकेट करते हुए चला देते हैं. सो स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश और आपकी सिमरन के साथ कहते रहिए
1: जियो बिंदास.

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वेल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
2: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वेल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वेल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

0: बिल्कुल मखना जी, आपके लिए घर बार छोड़ कर कतर आ चुके हैं आपसे बातचीत करने के लिए। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले सिमरन की खूबसूरती ने हमें डिस्ट्रैक्ट कर दिया था अपने टॉपिक से, लेकिन हम वापस आ गए हैं अपना फुल ऑन अपना ब्रेन वापस अपने सर में रख कर, एंड अब हम बात करने वाले हैं जिस पर हम बात कर रहे थे। सो एक लग्जरी ब्रांड ने एक शर्ट लॉन्च करी है जो कि बहुत गंद से भरी हुई है, उसमें स्टेन्स हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की गंदगी जो है वो है, बिकॉज इट्स जस्ट अ डर्टी शर्ट। मतलब हमारी धुलने से पहले भी शर्ट उससे साफ रहती है। जो शर्ट जो है पापा पिछले 10 साल से पहन रहे हैं एंड जिसमें वो बाहर अपनी कार ठीक करके आए हैं, उसके बाद भी वो शर्ट जो है, जो ये शर्ट बेच रहे हैं, उससे ज्यादा साफ है। सो बस आप लोगों से आपके ओपिनियन पूछे थे मैंने। सो जान लेते हैं कि क्या क्या कह रहा है कौन कौन। मोहम्मद यूसुफ खान जी ने कहा है कि नो कशिश, ऐसे ट्रेंड या फैशन जो है वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मतलब कुछ भी। आई एग्री विद यू। ओके एंड मुझे दम्बार जी ने जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहा है, मुझे नहीं पता, शायद गाना अच्छा सुनाया होगा मैंने इसलिए। संधू जी ने कहा है गुड मॉर्निंग जी, हरप्रीत संधू फ्रॉम दुकान, हेलो जी कैसे हैं आप। उसके बाद राजन जी ने जो है मुझे एक ड्राइव करते हुए फोटो भेजी है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग आई एम राजन एंड बारिश बहुत अच्छी है बट दूर दूर तक जो है कोई चांस नहीं है बारिश होने का। देखो मुझे पता है, ये बस जो मेरा ऐप है ना, ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है कि यार देखो बारिश हो सकती है। वैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि उनके यहाँ भी बारिश हुई है, सो पता नहीं, अब मुझे कोई आइडिया नहीं। मैं तो देखो स्टूडियो में बैठी हूँ, आप लोग मेरी आंखें बने हुए हो, आप लोगों को जो दिखता है वही मुझे दिखता है। एंड संजय जी ने लिखा है हाय लिसनिंग फ्रॉम कुवैत टू माय टेम्परेचर अराउंड 50, कोई क्लाउड्स नहीं। ऑफ कोर्स देखिए हमें कतर में नहीं दिख रहे, आपको कुवैत में कैसे दिखेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं, अजीत डेविड जी ने जो है हमें मैसेज किया है और उन्होंने लिखा है इट्स रियली हॉट हियर एंड बाहर खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्लाउड्स दिख रहे हैं पर फोटो नहीं खींच पाएंगे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। समझ रही हूँ मैं आपकी तकलीफ, कोई बात नहीं, मेरे लिए आप इतना मत कीजिए, इतनी मेहनत मत कीजिए, बाहर निकल के फोटो मत खींचिए, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए, पानी पीजिए और सनस्क्रीन लगा के ज़रूर रखिए। सो आपके लिए एक फ्रेश सॉन्ग जो है वो मैं प्ले कर रही हूँ, सो ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर, क्या कमाल है दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर। इस गाने को एंजॉय करो, पानी पियो, सांस लो और कूल रहो।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर
2: ये गाना।

बेनी दयाल की आवाज में हंगामा टू मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलिफेंट। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की देखो मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, लाइफ मस्त तब हो जाती है जब हमारा फैशन गेम एकदम ऑन पॉइंट हो जाता है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ये भी होती है कि यार जिस हिसाब से आजकल फैशन चल रहा है इसमें तो मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ। अब ट्रेंड के चक्कर में अपनी कंफर्ट को तो कॉम्प्रो नहीं कर सकते ना यार। तो अगर देखिए, अगर आप थोड़े भी अपने फैशन गेम को लेके कॉन्शियस हैं तो मैं आपको हेल्प करने के लिए यहाँ आ चुकी हूँ। अब मैं बात करूँगी इंटरनेट के नए ट्रेंड के बारे में। अब हर चीज जो है वो हॉल्टर नेक में आ रही है, यानी वो नेक जो गले के तरफ से जो है बंधा होता है एज अ चोकर, एंड उसके बाद नेक जो है वो जॉइन होता है आर्म्स के तौर पर। एंड ये जो है एक नया तरीके का ट्रेंड है जो पहले भी हुआ करता था। पहले की 80s की आप बॉलीवुड मूवीज देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलता था, लेकिन बीच में गायब हो गया था, अब वापस आ गया है हॉल्टर नेक। अब बात यह है कि ये हॉल्टर नेक जो है ये सिर्फ टॉप्स या ड्रेसेस में नहीं, ये कुर्तीज में आ गया है, ये साड़ी के ब्लाउजेस में आ गया है, एंड शर्ट्स में भी आ गया है। सो इस हॉल्टर नेक को मॉडर्न तरीके से पेयर कैसे किया जाए? सो आप एक फुल स्लीव्स या स्लीव्स वाला जो टॉप है वो अंदर पहन सकते हैं, उसके ऊपर ये हॉल्टर नेक वाले जो टॉप है उसको पेयर कर सकते हैं, ड्रेस को पेयर कर सकते हैं। इससे मॉडर्न लुक जो है वो भी आ जाएगा, एंड साथ में आप ट्रेंडी भी दिखेंगे। सो एक बार हॉल्टर नेक जरूर ट्राई करना, मॉडर्न ना होने का कोई इसमें चक्कर ही नहीं है। इसको आप अलग अलग तरीके से पेयर कर सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से। एंड देखो यार, फैशन तो आता जाता रहता है लेकिन कंफर्ट हमेशा रहता है, एंड रहना भी चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। सो कंफर्ट के चलते जब तक गाना जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट पर कॉकटेल टू मूवी से, इसे एंजॉय करो, और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास। गाना सुन के उसके बाद वापस आओ, आपकी कार की केयर के बारे में एक बहुत अमेजिंग चीज जो है वो मैं बताने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: गाय का नाम लो मान लिया, और आपने भी अपने मन में ये मान लिया है कि आपकी गाड़ी जो है वो आपसे खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। एटलीस्ट देखो कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ। अब एक सच बात बजे जो है अपने दिल पे हाथ रख कर बताओ कि आपने आखिरी बार अपनी कार को पैम्पर कब किया था, उसकी केयर कब करी थी। अब आप लोग कहोगे यार कशिश वो कार है, इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, उसकी हम केयर क्यों करेंगे। अच्छा, आपके हर लोज में, हर जब भी आप परेशान हुए हो, स्ट्रेस में हुए, उसको लेकर लंबी लंबी लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो, आपकी फैमिली टाइम में, आपकी ऑफिस के लेट होने वाले स्ट्रेस में भी उसने आपका साथ दिया है, लेकिन आप उसे पैम्पर नहीं करना चाहते हो। देखो यार, आपको बस अपनी कार को वो प्यार देना है जो वो डिजर्व करती है, इसलिए स्ट्रेट अवे पहुंचो वैल्वलिन के AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस पर, जो आपको मिलेगा सलवा रोड पर। इसमें जो है 150 ईयर्स का ग्लोबल ट्रस्ट है, और आपको सारे जेन्युइन वैल्वलिन प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं, प्रीमियम क्वालिटी फिल्टर्स आपको मिलने वाले हैं, और एक सबसे कूल चीज जो यहाँ मिलेगी वो है ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट, जिससे आपकी गाड़ी की जितनी भी सर्विस हिस्ट्री है वो हमेशा आपके फिंगर टिप्स पे रहेगी, यानी नो पेपर का झंझट और नो मम्मी से या किसी से भी लड़ना कि वो मेरे पेपर्स कहाँ रखे हैं। सो देखिए, अगर आपको ये सारा फायदे चाहिए एंड आपको अपनी कार को पैम्पर करना है, तो जल्दी से जाना है आपको सलवा रोड पे वैल्वलिन के AMTC प्रीमियम क्विक सर्विस पर। आप जो है एक नंबर मैं दे रही हूँ, उस पर कॉल भी कर सकते हो, 7765-5954 7765-5954 पर, और अपनी कार को एक प्रीमियम केयर आप दे सकते हो। देरी किस बात की, जल्दी से पहुंचो। फिलहाल आपके पास पहुंच रहा है, आपके रेडियो सेट्स पे पहुंच रहा है कूल सॉन्ग ऑफ द आर। सो सोचो कितना मजा आएगा जब एक अमेजिंग वाला गाना जो है आप सुनेंगे। गाने का नाम भी यही है। इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आर।

बिल्कुल जी, एक नजर में प्यार होता है, मुझे हुआ है, बहुत बार हुआ है, दोहा से हुआ है, भोपाल से हुआ है, बहुत सारी जगहों से हुआ है। हाँ, जगहों से ही हुआ है, घूमने बहुत जाती हूँ ना मैं। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ मैं, काम कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। अब देखो, कल जो है क्या करना है ये तो आप ही मुझे बताओगे कि आप लोगों को कौन कौन से काम है, लेकिन जब काम समाप्त करने के बाद थोड़ी सी एनर्जी बच जाए तो आप ये तो सोचोगे ना कि इतनी फन जगह पे रहते हो तो बाहर घूमने जाओ। अब बाहर घूमने जाओगे तो क्या कुछ कर सकते हो बाहर जाके, ये बताने के लिए मैं आ चुकी हूँ। अब देखो यार, वैसे तो जब अगर आप 4 बजे के आसपास अपनी कार से बाहर निकलें कहीं जाने के लिए, तो रेडियो ऑलिव जो है वो ट्यून इन कर लेना, क्योंकि मैं अपने टेक शो के साथ वहाँ पर आने वाली हूँ एंड आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन मस्ती के मज़े के तड़के के साथ। अब देखो यार, सबसे पहले तो लोकल डेट फेस्टिवल जो है वो होने वाला है, ये 10 अगस्त तक चलने वाला है सुक वाकिफ में, तो वहाँ जा सकते हो। हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल जो है वो इस वक्त चल रहा है, वहाँ आप जा सकते हो। फैमिली डे द लाइफ ऑफ प्लांट्स जो है वहाँ पर आप जा सकते हो, सैटरडे 8 अगस्त तक जो है चलने वाला है। एंड इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें भी होने वाली हैं, आप अलग अलग म्यूजियम्स में जा सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सेलिब्रेट की जा रही हैं, जहाँ पर स्पेशल आपको कुछ देखने को मिल जाएगा बाकी टाइम से थोड़ा हटके। सो इन सब चीज़ों को आप इंजॉय कर सकते हो फॉर फ्री, सो जल्दी से जाओ। एंड अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप जाने का प्लान कर रहे हो तो मुझे बताओ ना यार, इतना गेज कीपिंग अच्छी बात नहीं होती है। 3311063 इज द नंबर, फ़ोन उठाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि कल का क्या प्लान है, कहाँ जाने वाले हो, एंड अगर मतलब मुझे भी अच्छा लग गया तो हो सकता है हमारी मुलाकात भी हो जाए। फिलहाल रिश्ते नाते गाना मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाना है, दे दनादन मूवी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए, थोड़ी सी देर में बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं।

0: ऑफ कोर्स यार, वीकेंड जैसे जैसे करीब आता है वैसे वैसे हम थोड़े से यू नो बिना काम के होने लग जाते हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। शो आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे, लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त मैं बना रही हूँ। एटलीस्ट देखो कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ। अब खैर मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, आपको टाटा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड कल मुलाकात होगी हमारी वीकेंड वाले शो में, यानी शाम को 4 बजे से टेक टॉक पर, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे लेकिन मस्ती के, मजे के, तड़के के साथ। तो आना बिल्कुल मत भूलना वहाँ। फिलहाल आपके लिए अमेजिंग वाले गाने जो है वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, तो बस आप इंजॉय कीजिएगा। बाकी आपका वीकेंड जो है कैसा रहा इस पर हम बात करेंगे अब परसों। कल बहुत अच्छे से इंजॉय करना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, एंड सुनो गाड़ी जो है वो धीरे धीरे हौले हौले चलाना, ठीक है? सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं चलती हूँ, मुझे याद करते रहना 3311063 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आप जब चाहो तब मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर इंस्टाग्राम पे खोजने का मन कर रहा है तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर आ जाना, वहां पर आपको रेडियो ऑलिव की सभी आरजेस जो है वो मिल जाएंगे। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना इंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास, टाटा बाय बाय।
1: Radio Olive Park.
2: Fresh, fresh, fresh, fresh, fresh. Ye gana fresh.
1: Fresh song of the hour.
2: Ye gana.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वेल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वेल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वेल्वोलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी।
0: Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव और ऑलिव रिचार्ज में मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बांध रखी है तो कसके बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक जर्नी किक स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो चलिए ये सिलसिला शुरू करते हैं। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है। तो तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज। और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: iRadio Olive 106.3 listeners, this is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: सोने के बावजूद भी थका थका महसूस होता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, या फिर हर दिन अपना रूटीन जो है एक रोबोट की तरह फॉलो करते हो, तो माय फ्रेंड आप फंक्शनल फ्रीज में हो। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम बात कर रहे हैं फंक्शनल फ्रीज के बारे में, जहां पे हम माइंडलेसली स्क्रॉल करते हैं घंटों तक, अपने डेली रूटीन में एक रोबोट की तरह चले जाते हैं, अच्छे से सोने के बावजूद भी काफी टायर्ड और फ्रॉगी हेडेड फील करते हैं, और बहुत ही एक ऑब्लिगेशन के इसमें हम ऑपरेट करते हैं इंस्टेड ऑफ जॉय और पैशन। अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो तो जैसे कि मैंने बोला, आप एक फंक्शनल फ्रीज में हो। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। ये इसलिए होता है जब क्रॉनिक स्ट्रेस या फिर बॉडी जो है बहुत टाइम से फाइट और फ्लाइट में रहती है, तो धीरे धीरे शट डाउन होना चूज करती है। तो ये चीज जो है उन लोगों के साथ होता है जो हमेशा एक स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं या फिर हमेशा स्ट्रेस रहते हैं। अब इसे कैसे ओवरकम किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं गानों के उस पार। फिलहाल यहाँ पे यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे रेडियो ऑलिव में फंक्शनल फ्रीज के बारे में। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और हमने बात की फंक्शनल फ्रीज क्यों होता है और जब होता है तो कैसा महसूस होता है, अब इसे कैसे ओवरकम किया जा सके इसके बारे में बात करते हैं। तो फंक्शनल फ्रीज को ओवरकम करने के लिए कुछ चीजें हम कर सकते हैं। सबसे पहला है जेंटल मूवमेंट, बहुत ही छोटे से टाइनी माइनी से बॉडी मूवमेंट्स कीजिए, जैसे कि स्ट्रेचिंग, वॉकिंग स्लोली या फिर रॉकिंग बैक एंड फोर्थ टू सिग्नल सेफ्टी टू योर नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम टेम्परेचर शिफ्ट कर सकते हैं, ठंडा पानी जो है अपने चेहरे पर एकदम झपाक तरीके से मार सकते हैं या फिर एक वार्म मग ऑफ टी, जिनको चाय पसंद है वो चाय भी पी सकते हैं। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आसपास के पांच चीज जिन्हें आप देख सकते हो उनको नाम दीजिए, चार चीज जिन्हें आप टच कर सकते हो, आपके माइंड को एंकर करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सहेल डीपली, सांस लेना बहुत जरूरी है, गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। उसमें एक्सटेंडेड एक्सहेलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमारे वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए और आपके गाड़ी के लिए मैं बताना चाहूंगा। देखिए भाई, गाड़ी चलाते हुए आज आप जा सकते हैं वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड पर, जहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से एक प्रीमियम क्विक सर्विस आपकी गाड़ी को मिल सकती है। उसके साथ साथ वहां पे जो ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ 100% जेन्युइन वैल्वोलिन लुब्रिकेंट्स, फिल्टर्स और प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ताकि आपकी गाड़ी की सेफ्टी, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस एकदम टॉप नॉच रहे। और वहां पे है डिजिटल कार पासपोर्ट, यानी कि ANPR टेक्नोलॉजी से पूरी हिस्ट्री मेंटेन की जा सकती है। एंड क्या चाहिए है, अगर आप वहां जाके ऑयल चेंज कराते हैं तो आपको एक बहुत ही कूल मर्चेंडाइज मिलेगा वैल्वोलिन का। तो जाने इंतजार किस बात का है, आज ही आप जा सकते हैं। वैसे एक नंबर मैं देता हूं, उस नंबर पे आप कॉल करके बात करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। तो को नंबर नोट कर लीजिए, 7765-5954, 7765-5954, और कॉल करके बोलना कि रेडियो ऑलिव से सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है, ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, ये गाना।

0: दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: सभी को फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक चीज जो अभी भी मुझे चकित करती है, अचंभित करती है, वो है एमएस धोनी का हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेना। एक बहुत ही सिंपल पोस्ट उन्होंने डाला इंस्टाग्राम में, एक वीडियो डाला था और उसके पीछे एक गाना लगाया था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है करके। और मैं सोचा कि वाह यार, मतलब क्या अलूफ बंदा है। इन्हें नहीं फर्क पड़ता फेयरवेल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, फेयरवेल चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आए, खेले, जो करना था किया, ट्रॉफी जीतने थे जीते और चले गए। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये जो मेंटालिटी है उनकी, और इवन ये मेंटालिटी उन्हें गेम में भी हेल्प करती है। जब वो मैच खेलते हैं और बहुत ही क्रूशियल मोमेंट में मैच पहुंचता है तो वो यही बोलते हैं कि भाई अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, हमें जो करना है वो हम करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और ये काफी सॉर्टेड एक माइंडसेट होना एज ए लीडर उन्हें बहुत हेल्प करता है। और मुझे इसलिए लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है एक बहुत ही बढ़िया लीडरशिप लेसन मटेरियल है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765954। वैल्वलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक लग्जरी के बारे में बात करना चाहता हूं जो आजकल के जमाने में जितनी मिले उतनी कम लगती है। मुझे लगता है शायद एज के हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि बचपन में जब ये लग्जरी मुझे देते थे तो मैं मना कर देता था। मैं कहता कि नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, मगर अभी मैं बहुत क्रेव करता हूं, और ये लग्जरी है नींद। जी हाँ, नींद, स्लीप, सोना। नींद सही में एक अंडररेटेड लग्जरी है, और बचपन में जब मुझे दोपहर को सोने के लिए बोलते थे, सुलाया जाता था, मैं भाई रेबल करता था, मैं मना कर देता था। मैं कहता कि मैं नहीं सो रहा, सोते नहीं है हम लोग, हम फन करते हैं, चिल करते हैं करके। मगर आज इस वक्त इस जमाने में मैंने रियलाइज किया कि नींद की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, और नींद अगर मिल रही है तो ले लो, जाने मत दो उसे। और यही बात बोलते हैं हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
3: ओले लगा और हो जा रिचार्ज.
0: ओलिव रिचार्ज, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर. जियो बिंदास.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
0: Radio

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलवे 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जो कई दफा आपने सुना भी होगा, वो है क्लटर कम करो। ये चीज जो है प्रोडक्टिविटी में, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इन सब में हमने सुना होगा कि भाई जितना क्लटर कम कर सकते हो उतना क्लटर कम करो। अपने घर का, अपने ऑफिस का जो स्पेस है, वर्क स्पेस है या फिर पर्सनल स्पेस है, वहां का क्लटर जितना कम रहेगा उतना बढ़िया रहेगा करके। उसके साथ साथ मेंटल क्लटर कम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल क्लटर कम करने के लिए इधर यू कैन राइट डाउन थिंग्स, हम लिख सकते हैं जो भी हमारे मन में है, या फिर एक ग्रुप चैट बनाइए आप जहां पे आप अपने थॉट्स जो भी रैंडमली आ रहे हैं उनको डंप कर सकते हैं, ताकि हमारे मन में थॉट्स रहे ना, बैकग्राउंड में ये प्रोसेस ना चलते रहे। क्योंकि ये प्रोसेस को अगर हम डिलीट कर देते हैं या फिर निकाल देते हैं माइंड से तो बढ़िया रहता है। अगर ये बैकग्राउंड में चलते रहते तो हमारी एनर्जी खपा लेता है ये भाई। तो ये क्लटर कम करने के प्रैक्टिसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

और मैं निकला कट लेके रस्ते से, गाड़ी मोड़ के सीधा जाइए वैल्वलिन AMTC, क्योंकि वहां पे आपकी गाड़ी को मिल सकता है प्रीमियम सर्विस। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम बात कर रहे थे वैल्वलिन AMTC सलवा रोड पर जो है, जहां पे ट्रेंड एक्सपर्ट्स आपके गाड़ी के केयर के लिए यूज करते हैं प्रीमियम क्वालिटी इक्विपमेंट्स, प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो वैल्वलिन से है, चाहे वो ल्यूब्रिकेंट्स हो, फिल्टर्स हो, और ये सब आपकी गाड़ी को वो केयर देता है जो आपकी गाड़ी डिजर्व करती है। उसके साथ साथ एक नंबर मैं बता देता हूँ, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए और बात कीजिए और बोलना कि सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए रेडियो ऑलिव से। नंबर है 7765-5954, 7765-5954। तो आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, विजिट कीजिए वैल्वलिन AMTC सलवा रोड पर। और हाँ, जब आप विजिट करोगे और वहां पे ऑयल चेंज करवाओगे तो आपको एक बहुत ही कूल मर्चेंडाइज मिलेगा वैल्वलिन की तरफ से। और यही बात बोलते हैं हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: HSR is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सभी का फिर से एक बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और आजकल के जमाने में बाहर निकलते वक्त GPS ऑन ना करना, इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाती है ना। कहीं पे भी हमें जाना हो, हम GPS में लोकेशन डालते हैं, तब जाके हम वहाँ पे सही सलामत पहुंचने की एक आशा करते हैं। क्योंकि कई दफा हो जाता है कि भाई GPS में लोकेशन दिखाने के बावजूद भी, रास्ता दिखाने के बावजूद भी हम गलत रास्ता ले लेते हैं, या फिर GPS गलत रास्ता दिखा देती है। तो मैं सोच रहा था कि भाई आजकल के जमाने में बिना GPS के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना GPS के ट्रैवल करते हैं, एंड आई थिंक GPS जो है बहुत बड़ा कन्वीनियंस बन चुका है। मगर मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा GPS ना हमारे माइंड के अंदर भी होना चाहिए था जो मुश्किल से हमें निकालें, धीरे धीरे धीरे हमें रास्ता बताएगी, तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये स्टेप लेना है, ये टर्न लेना है। काश ऐसा एक इमोशनल मेंटल वेलबींग वाला GPS होता जो हमें दिक्कतों से सेफ गार्ड रखने में, या फिर दिक्कतों से नेविगेट करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता। और आपको क्या लगता है इस बारे में बताइए मुझे। और ये बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। Awesome.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Awesome.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
3: लगा और हो जा रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई मैं एक चीज याद दिलाने के लिए आया हूं, वो ये है कि सीधा जाइए इंस्टाग्राम में radioolive.qa सर्च कीजिए, और अगर फॉलो बटन नहीं दबाया तो एक बार दबाइए, और हमारे कंटेंट के साथ जरा आप इंटरेक्ट कीजिए, चेकआउट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट और सेव भी कीजिए. उसके साथ साथ हमें सुनते वक्त अगर आप रिकॉर्ड करके स्टोरी डालते हैं तो हमें टैग कीजिए, हम रीशेयर भी करेंगे. तो यही बोलते हुए हम याद दिला रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ आप इंटरेक्ट करते रहिए, कंटेंट देखते रहिए, और गिफ्ट्स जीतने के चांसेस भी आपको वहां के थ्रू मिल सकते हैं. तो यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन ड्रिवन बाई ट्रस्ट पावर्ड बाई क्वालिटी।
0: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
4: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और मेरा वक्त यहाँ पे खत्म होने वाला है। 3 घंटे टक टक टक टक करके निकल गए, पता भी नहीं चला, मगर कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। फिर मिलेंगे हम कल दोपहर को नहीं, अब सीधा मिलेंगे सैटरडे दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, वीकेंड है तो मस्त तरीके से खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने खास लोगों को खुश रखिए, और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए एंजॉय करिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

ओके आई विल टेल यू. स्टूडियो की तरह की हलचल सत सिमरन गौर है थोड़े नाल जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है. हैप्पी वी

कैसा रहा आपका आज का दिन? और आज तो वीकेंड भी आ चुका है एंड आई एम श्योर आप लोगों के प्लान बन गए होंगे, चाहे वो सोने का प्लान हो या फिर बाहर जाने का प्लान हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपके दिन के बारे में बात करेंगे, कैसा रहा आपका दिन। 3311063 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, इंतजार कर रही है एक

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

पूरे हफ्ते में जो भी भजड़े मची होती है, जो भी काम आपने करना होता है, लेकिन ये जो हफ्ते के दो दिन होते हैं, एक तो मतलब एक्चुअली ढाई दिन हो जाते हैं हमारे लिए, थर्सडे नाइट है, ओके, आपके पास

0: फ्राइडे पूरा दिन है, और अगर आपकी सैटरडे को छुट्टी है तो फिर सैटरडे भी आपके पास पूरा दिन है। तो ये टाइम पे कोई भी स्ट्रेस नहीं लेने का, किसी चीज के बारे में नहीं सोचने का, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटाइज करने का और अपने बारे में सोचना पड़ेगा आपको कि किस तरह से आपने जो है वो इस वीकेंड को स्पेंड करना है। सो बताइए आज आपके वीकेंड का क्या प्लान है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मेरा ना कुछ इटालियन खाने का बड़ा मन कर रहा है यार।
1: आज रात का सीन बना ले।
0: ऐसा पास्ता पिज्जा हो जाए यार।
2: आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है।
0: और जब वीकेंड पे मुझे कुछ इस तरह का अतरंगी खाना होता है, क्योंकि सबका मन करता है यार कि वीकेंड के टाइम पे आप कोई बिल्कुल भी ऐसी कैलोरीज डाइट का ध्यान जो है वो ना दो, तो मैं लंच नहीं करती हूँ। मतलब वैसे भी मैं दो मील लेती हूँ, मॉर्निंग मेरा ब्रंच होता है सीधा और उसके बाद डिनर होता है। तो फिर मैंने वो अपना ब्रेकफास्ट किया हुआ और फिर रात में अपन मैं या जिंदगी मिलके बिताएंगे। सो बताइए आपका क्या सीन है आज वीकेंड का। 3311063 पर क्या क्रेव कर रहे हो आप खाने का आज।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: जबरदस्त है।

0: वाले सीन।
1: आज रात का सीन बना ले।
0: वीकेंड का सीन नहीं बनाया तो आपकी और हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। एज मैं हमेशा कहती हूँ कि यार देखो, जरूरी नहीं है कि पार्टी करनी है, बहुत जाना है, नहीं, यही सीन होता नहीं बेटा। अपने आप के साथ भी बैठना ये भी एक सीन होता है, बस उतना है कि उदास नहीं होना है अगर आपको अकेले बैठना है तो। थोड़ी देर पहले जैसे मैं बता रही थी कि मुझे इटालियन बहुत ज्यादा पसंद है, पिज्जा पास्ता, भाई मेरे को चुल मच दी है वीकेंड पे ये खाने की। तो
2: सिमरन हाय, आपको पता है 100 ग्राम कैलोरीज को भी बर्न करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना जिम जाना पड़ता है, कितनी डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। और आजकल के जमाने में जहां प्रोटीन, कपड़ा और मकान इज अ प्रायोरिटी, और वहां आपने पिज्जा पास्ता बोल के जो आग लगाई है ना अंदर, I cannot resist now. Have a good evening, Simran. Take care.
0: You too, love. मैं समझ सकती हूँ। देखो यार, मैं बर्न करने की बात कर रहे हो ना, तो मैं जिम तो नहीं जाती हूँ, लेकिन पिछले एक साल से मैंने मेरी लाइफस्टाइल में काफी बड़ा चेंज किया है, कैलोरी डेफिसिट। सो मैं हर दिन सिर्फ और सिर्फ 1200 कैलोरीज खाती हूँ। सो मेरी 1200 कैलोरीज के हिसाब से मैं चीजें खाती हूँ। अब बात आती है पिज्जा की और पास्ता की, तो मैंने ऐसा पास्ता भी ढूंढ लिया जो प्रोटीन पास्ता है। तो अगर मैं ये पास्ता खा रही हूँ तो उसमें मुझे 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, अगर मैं पिज्जा खा रही हूँ तो उसमें भी मेरे को 22 से 23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सो या प्रोटीन ही जिंदगी है। बट या वीकेंड के टाइम पे जो मेरी कैलोरीज हैं कभी कभी 1500-1700 चली जाती हैं, सो दैट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि जिंदगी जीना थोड़ी ना छोड़ सकते हैं बाबू मशाए। ओहो, बहुत ज्यादा फिल्मी हो गया यार। बाय द वे, मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपने मैं वापस आऊंगा मिस कर दी थी फिल्म, तो 7th August को शायद आज रात 9:30 बजे तक ये फिल्म जो है नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी। एंड यस, ऑफकोर्स आजकल फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, सो खाने की बात जब हम कर रहे हैं तो बी केयरफुल, जितना हो सके फ्रेश खाइए, रखा हुआ मत खाइए यार, कि मतलब 1-2 घंटे पड़ा रहा रूम में और फिर बाद में खा लिया, वो मत करिएगा। बाकी सॉर्टेड है ब्रो, पानी पीते रहिए एंड चिल करो यार।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ.
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं. कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले.
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है.
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
4: सलवा रोड पर वैल्वलिन AMTC. क्विक सर्विस और नो टेंशन.
3: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
4: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं. सिर्फ जेन्युइन वैल्वलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
5: विजिट वैल्वलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954. वैल्वलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

इतना सोना क्यों रब ने बनाया, बस बनाता यार। सोने वर्ड को ना मतलब बहुत गलत तरीके से कभी कभी बताया जाता है। लोगों को लगता है कि अच्छी सूरत होने से, अच्छा रंग होने से ये खूबसूरती है। मुझे लगता है कि किसी भी इंसान की खूबसूरती पता कब जीरो हो जाती है, चाहे वो जितना भी मर्जी खूबसूरत है, कि जब उसका दिल अच्छा नहीं है, वो किसी से बात अच्छे से नहीं करता, वहीं पे जीरो हो जाती है उसकी खूबसूरती। खूबसूरती जब अपनी एडल्टिंग हो जाती है, जब हम बड़े हो जाते हैं, तब समझ लगता है कि खूबसूरती सिर्फ ये हुस्न में नहीं है, खूबसूरती इस दिल में है कि आप कितनी खूबसूरती से लोगों को ट्रीट करते हो, है ना। सो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ये क्या है, क्या है, एक बंदा क्या कर रहा है कि वो ब्लैक कलर की ऐसे हुडी पहन के, ब्लैक कलर के कपड़े पहन के, ऐसे ग्रिम रीपर का कॉस्ट्यूम पहन के ना, वो बंदा एक हॉस्पिटल की छत पे चढ़ गया और वो हॉस्पिटल की छत पे खड़ा हो रहा है एकदम चुपचाप ऐसे। लोगों को डर लग रहा है भाई, पेशेंट्स को डर लग रहा है, आने जाने वालों को देख के डर लग रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया और बोला कि भाई ये क्या है, तो वो गया वहां पे, उसने गलती भी मानी कि हाँ भाई मैं कर रहा था, लेकिन क्यों कर रहा था वो नहीं बताया यार। लोग मतलब प्रिपेयर होने के लिए कुछ भी करते हैं यार। उसमें कोई दो राय नहीं है, ह्यूमिडिटी ने बैंड बजा रखी है यार। वापस दौड़ के वेदर के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आज तो जानना और भी ज्यादा जरूरी है, अगर वीकेंड के टाइम भी आप बाहर निकल रहे हैं तो। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

इस गाने में वो घाघरा घाघरा करके साथ में करते हैं ना, डिश मुझे बड़ा सही लगता है वो, और मैं साथ साथ करती हूँ वो। नेक्स्ट टाइम नोटिस करना आप, मतलब जब ये गाना चलेगा

0: जी मैं जी सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर तोड़े नाल 6:06 और 32 सेकंड हो चुके हैं।
1: टाइम चेक brought to you by Nanatal Pahar the ultimate katri adventure sukwake alkhol
0: aur kya kehta hai aaj ka mausam
2: mausam aapke suno
0: मतलब पिछले दो दिन के मुकाबले आज ह्यूमिडिटी जो है वो थोड़ी सी कम दिखा रहा है, 40% ह्यूमिडिटी है। फॉर नाउ रात होते होते बढ़ना जाए यार, और विंड जो है 12 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। अभी के लिए टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस एंड फील्स लाइक 42 डिग्री सेल्सियस। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर था 46 डिग्री सेल्सियस। सो या मौसम तो है ही ऐसा, लेकिन मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, वीकेंड है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन.
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई.
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं.
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954. वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी.
4: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ.
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

देखो पांडे जी तो सीटी बजा रहे हैं, आपकी गाड़ी भी एकदम सीटी बजनी चाहिए, मजेदार जो है वो गाड़ी आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह एकदम मतलब फिट। ओके सो अगर आपकी गाड़ी में दिक्कत आएगी आप तभी तो नहीं जाओगे ना अपनी गाड़ी को, वैसे भी आपको प्रीमियम केयर देनी है क्योंकि इससे आपको बहुत सारे काम पड़ते हैं, जहां पे भी आपको काम पे जाना होता है ये आपको लेके जाती है। सो वेल्वलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस सलवा रोड, वहां पर आप अपनी गाड़ी को चेक करवा सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑयल चेंज करवाया ना, तो अभी के लिए अगर आप वहां पर ऑयल चेंज करवाने जा रहे हैं तो आपको एक स्पेशल फ्री गिफ्ट जो है उनकी तरफ से जरूर मिलने वाला है। एंड उसके साथ साथ ये सबको पता है कि भाई इनके जेन्युइन वेल्वलिन प्रोडक्ट्स हैं, प्रीमियम फिल्टर, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ANPR पावर्ड डिजिटल कार पासपोर्ट है जिसमें आपकी कार की पूरी सर्विस हिस्ट्री जो है वो सेव रहती है। सो आप एक काम करिएगा, पहले कॉल कर लीजिएगा या फिर इनके शोरूम भी आप जा सकते हैं। तो जब आप कॉल करेंगे या शोरूम जाएंगे तो बताइएगा कि सिमरन कौर ने ही बताया था इस चीज़ के बारे में यार, ठीक है। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 7765-5954, एक बार फिर से 7765-5954, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। एंड एक नंबर गाने चल रहे हैं क्योंकि विंगड़ का सीन सेट है अपना।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ. Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ओए होए मस्त मिलती आ रही है। देखो ऐसा मैंने बहुत बार किया है और मैं आपको बताऊंगी, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग करते होंगे कि कभी हम सब अपने पता है कि अकेले रहते हैं, जब भी हम ग्रोसरी लेने जाते हैं या ऑर्डर करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें जो है भूल जाते हैं। मैं मतलब जितनी मेरे को लानी होती है मैं उससे कुछ अलग ही ले आती हूँ और घर आके मुझे याद आता रहा यार ये भी लाना था। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं मेरे व्हाट्सएप पे, जो खुद का मेरा व्हाट्सएप है ना, उसके अंदर जो है ना मैं चैट में लिख लेती हूँ कि ओके मेरे को क्या क्या चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हद हो गई है, एक लड़की जो है वो वायरल हो रही है, उसने क्या किया है कि इंस्टाग्राम पे कोई एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जिसके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, नाम मेरे को याद नहीं है उनका, है ना, मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके डीएम में जाके उसने अपनी ग्रोसरी का सामान जो है वो लिखा हुआ है। लाइक सीरियसली, क्योंकि उसको पता है कि वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, उसने कभी ये डीएम चेक करना नहीं, आलू गोभी नमक जो भी लिखना था उसने सब लिखा हुआ है। सीरियसली भाई साहब, मुझे लगा था मतलब मैं ही कुछ वियर्ड जो है वो करती हूँ, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मैं मैच नहीं करूंगी इसको। वो भी सह नहीं पाएगा अगर उसने डीएम ओपन कर लिया तो। तो आप बताइए, ये जो आप अपनी ग्रोसरी वाला सामान है वो कहां पे आप लिख के रखते हैं?

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

22 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है बेबी। टाइम चेक। वो मैं आपको बताती रहूंगी जब तक मेरा शो खत्म नहीं होता इन बिटवीन, क्योंकि कल जो था वो 77 के करीब था, परसों भी यही हाल था, तो आज ह्यूमिडिटी थोड़ी जो है वो कंपैरेटिवली कम लग रही है। मेरे को इस चीज से ज्यादा फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग जो चश्मा लगाते हैं ना भाई, बाहर निकलते ही

0: चश्मा जो है वो एकदम सफेद हो जाता है। सो या आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो फिल्म है डर।
1: तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं।
0: और ये क्या प्यारी फिल्म है यार। इस फिल्म के बारे में बहुत सारी खास बातें ये है कि ये फिल्म में सनी देओल थे एंड शाहरुख खान थे, है ना, राइट। सो जो सनी देओल और शाहरुख खान का कैरेक्टर था वो यश चोपड़ा ने बोला कि भाई, सनी देओल को बोला कि तू बता तुझे कौन सा रोल चाहिए, सुनील मल्होत्रा का या फिर राहुल मेहरा का। तो देओल ने बोला कि भाई मुझे मल्होत्रा का रोल जो है वो करना है। तो उनको लगा कि मेरे करियर को ये जो रोल है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। बट यहाँ पर रिवर्स हो गया मामला। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि मतलब बॉबी देओल से, सॉरी कह रही हूँ, सनी देओल से ज्यादा जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को पसंद किया गया। और एक ऐसी रेयर बॉलीवुड की फिल्म है हिस्ट्री में जिसमें विलेन को सबसे ज्यादा सिंपैथी एंड एप्रिसिएशन जो है वो मिली है हीरो से ज्यादा। और भी इस फिल्म के बारे में बातें हैं, मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: Hi everyone, I'm Arman Malik.
3: I'm your number one.
2: 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
4: Radio Olive, I'm a number one.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
8: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: यस, डर फिल्म के बारे में बात करेंगे। राहुल का किरदार था ना, सो यश चोपड़ा चाहते थे कि अजय देवगन इस रोल को करे, लेकिन वो ऊंटी पे शूटिंग कर रहे थे किसी फिल्म की, तो उन्होंने वापस उसको रिप्लाई नहीं दिया। आमिर खान को ये रोल जो था वो पहले ऑफर किया गया था, ठीक है, तो आमिर खान जो थे वो हैप्पी नहीं थे, कहते हैं कि भाई परंपरा फिल्म में जिस तरीके से उनके कैरेक्टर को हैंडल किया गया, मैं उससे हैप्पी नहीं हूँ। शाहरुख खान फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट किया रोल, लेकिन फिर भी उनके माइंड में ये था कि भाई मतलब मेरे यू नो ये शुरुआती करियर की फिल्म्स हैं और आप मुझे विलेन बना रहे हो, बट समहाउ इंसिस्ट किया गया राइटर एंड डायरेक्टर, तो उन्होंने फिल्म को जो था वो यू नो साइन कर दिया। सो तू मेरे सामने, ये जो अभी आप गाना सुन रहे थे, इसमें शाहरुख खान ने जो शर्ट पहना है ना, सो बाजीगर बाजीगर वाले गाने में भी उन्होंने कुछ लाइंस के बीच में ये शर्ट, सेम शर्ट जो है वो रिपीट की है। सो इस फिल्म के टाइटल के बारे में बात करते हैं। सो ये जो फिल्म का टाइटल था वो एक पॉपुलर हॉरर यू नो फिल्म के लिए जो आने वाली थी, मतलब उसके लिए ये टाइटल जो था वो रखा हुआ था, जो कि पॉपुलर फिल्म मेकर थे श्याम राम से, तुलसी राम से, तो उन्होंने यश जी ने उनसे बोला कि भाई रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे को ये टाइटल चाहिए, सो उन्होंने ये टाइटल दे दिया। एंड एक और बात है इस चीज़ जुड़ी हुई, ये जो गाना था तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, इस गाने में शाहरुख खान जो है वो सेम ही कपड़े पहनता, लेकिन इस सॉन्ग में जूही चावला की ड्रेस जो है वो चेंज होती रहती है, तो नेक्स्ट टाइम आप भी नोटिस करिएगा, ठीक है। सिमरन कौर आपके साथ एक नंबर गाने चल रहे हैं, क्योंकि वीकेंड है बेबी। अब बताओ टाइम अब हमारे पास बचा हुआ है, जो कि हम मजे करने वाले हैं यार।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: हां जी मैं कहीं सोने की दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ हैप्पी वीकेंड
1: रेडियो ऑलिव पर और जे सिमरन के साथ
0: जिंदगी जीते जीते ना हम लोग जो हैं वो कभी कभी अपने लिए ना जी के लोगों के लिए जीना स्टार्ट कर देते हैं। लोगों को देखते हैं कि ओ वो हमको देख रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल देख रहे हैं। अरे मतलब वो लोग देख रहे हैं और हम अपना लाइफस्टाइल वैसे ही बनाने लग जाते हैं कि यार अपना लाइफस्टाइल एकदम लैविश होना चाहिए, अपना ये होना चाहिए, ये है वो है। लेकिन इस चक्कर में ना, ये जो चक्कर है ना, इस चक्कर में आप ये भूल जाते हो कि यार ये आपको चीज अंदर से खुशी दे रही है या फिर आपको ऐसे फोर्स कर रही है हर दिन कुछ नया करने की कि बाकी सामने वाले लोग जो है वो आपको नोटिस करें। सो मेक श्योर कि आप अपनी जिंदगी जो है वो उन लोग मतलब वैसे मत दीजिए जिए कि यार बाहर वाले लोगों को वो आपकी जिंदगी अच्छी लग रही है। आपको अंदर से आपकी खुद की जिंदगी जो है, आपका लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा लगना चाहिए। लोगों को क्या है, आप उनके तरीके से भी चीजें करोगे उन्होंने फिर भी कोई नुक्स निकाल देना है। तो अपने तरीके से अपनी जिंदगी जियो, लोगों के लिए नहीं।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅਬ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਲਗਾਏ वीकेंड के टाइम पे बाहर निकले हुए हो और मुझे सुन रहे हो अपने अपनी गाड़ी में अपने अपने घर में हो जहां पे भी हो तो एक काम करो क्विकली मुझे आप सबके नाम लिख के भेज दो ताकि मैं एक एक करके आप सबके नाम जो है वो ले लूं। सो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063 जी हाँ 3311063। इस नंबर पे आपने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना है। अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोल दूंगी। अकरम जी, फैजल जी, जुनैद जी, साजिद जी, सादिक जी, रमन, अप्रीत, खेमराज जी, सोनी जी, थैंक यू सो मच। हाँ, अक्सा इंतशाम जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कामरान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। चेरी जी, थैंक यू सो मच। अबूजर अंसारी जी, थैंक यू सो मच। गुरांश जी, थैंक यू सो मच। सुमन प्रधान जी, थैंक यू सो मच। अहमद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। इमेजिनरी नेम मत लिखिएगा ताकि टाइम वेस्ट होता है यार, बेचारे किसी का नाम रह जाता है। हमजा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हमद जी, थैंक यू सो मच। इकरा, थैंक यू सो मच। मिसेस इंतशाम जी, थैंक यू सो मच। विजय जी, मिसेस इंतशाम लिख दिया आपने, आपका खुद का नाम भी तो होगा यार कोई, ठीक है। सौजन्या जी, थैंक यू सो मच। तीरथ प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। पाली जी, थैंक यू सो मच। विजय जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मोहम्मद वसीफ जी, फीफ जी, थैंक यू सो मच। जोएल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। बुशरा जी, थैंक यू सो मच। हिना जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अगला गाना शुरू होने वाला है, जल्दी से नाम लिख दो फटाफट से। इमरान जी, थैंक यू सो मच। एस बी के सूरज जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रेहान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बेटा, अब आप थैंक यू लिखो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी जो है वो बना दो, मजा आ जाएगा। अगले घंटे खेलते हैं एक चुटकी सॉन्ग।

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाय ट्रस्ट, पावर्ड बाय क्वालिटी।
3: Doctor On Air, brought to you by Naseem Healthcare.
4: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
3: Doctor On Air, brought to you by Naseem Healthcare.
5: Hi everyone, I am Arman Malik, 106.3 FM Radio Olive, Jio Bindas.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: करण जी। तो फिर क्या बोलती पब्लिक? चलो फिर अभी आपकी पार्टी के बारे में तो आप मुझे बता देंगे जब आप मुझे वॉइस नोट भेजेंगे, क्योंकि अब आप वॉइस नोट मुझे भेजने वाले हैं क्योंकि हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ओलिव पर।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: ये जो चुटकी सॉन्ग मैं आपको सुनाने वाली हूँ, तो आपने मुझे वॉइस नोट भेज के जवाब देना। वैसे अब मुझे लग नहीं रहा कि आज इसको आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ेगी बार बार सुनने की। बताओ ये कौन सा गाना है? वॉइस नोट भेजना है आपने, लिख के नहीं भेजना है। सो बढ़िया सी एनर्जी के साथ, वीकेंड वाली एनर्जी के साथ रिकॉर्ड करिए एक वॉइस नोट। हे सिमरन, अपना नाम बताइए और गाना गा के बताना चाहते हैं गा दीजिए, बोल के बताना चाहते हैं बता दीजिए, पर लिखिएगा मत। एक बार वापस से सुनो। और ये भेजना है 3311106।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: सिमर आपके साथ और हम खेल रहे हैं
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: कल मुझे लगा कि आप लोगों के लिए काम थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा इजी किया। तो कितने लोगों ने पहचाना आज का गाना?
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: थैंक यू सो मच।
3: गाना है
0: ओके जी।
4: हे सिमरन, गाने का नाम है दिल तो पागल है दिल दीवाना है, और मेरा नाम सरगुन है जो आपको ये शेयर कर रहा है।
0: बहुत प्यारा नाम है यार आपका।
5: हे सिमरन, गुड इवनिंग, वेरी गुड, एंड द सॉन्ग इज

0: एक नंबर
1: जियो बिंदास
2: डार्लिंग, हाउ आर यू?
0: गुड यार.
2: मैं मकसूद फ्रॉम मुंबई, वर्किंग हियर इन दोहा.
0: जी,
2: द चुटकी सॉन्ग यू प्ले इज दिल तो पागल है.
0: ओके,
2: द सॉन्ग इज दिल तो पागल है.
0: ओके,
2: दिल दीवाना है, अक्षय कुमार एंड माधुरी दीक्षित.
0: ओके जी,
2: थैंक यू
0: सो मच. यू टू,
2: नाइस वीकेंड,
0: हैप्पी वीकेंड.
3: हाय सिमरन जी, माय नेम मोहम्मद इमरान. गाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है, पहली पहली बार मिलाता है यही हंसाता है.

0: यही रुलाता है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
1: बिल्कुल
2: सलाम वालेकुम सिमरन बाजी, हम खान अला बोलता है
1: okay.
2: गिलगित का खास
1: ओके
2: okay. ये जो गाना आपने लगाया है ये हमारा फेवरेट गाना है
1: ओके okay.
2: दिल तो पागल है,
1: ओह माय गॉड,
2: दीवाना है,
1: पागल।
2: अच्छा हम बचपन से सुनता आया है, हमारा गाड़ी में हमेशा चलता, हमारा फेवरेट
1: ओके okay.
2: दिल तो पागल है,
1: oh.
2: दिल दीवाना है।
1: सो क्यूट, थैंक यू।
3: जय सिमरन जी, कैसी हैं? गुड इवनिंग।
1: वेरी गुड।
3: आपने सॉन्ग सुनाया, ये गाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है, आपने भी हमने हमको पागल करके रखा हुआ है। पहले आपका शो लगता था सुबह 8 बजे, तो वो बहुत मिस करता था मैं
1: okay.
3: क्योंकि वो काफी दिन हो गए आपका प्रोग्राम नहीं सुना था।
1: ठीक है जी,
3: काफी देर के बाद सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: थैंक यू जी।
3: मेरा इमरान अहमद है
1: okay.
3: तो अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। सत श्री अकाल जी।
1: थैंक यू। बाय बाय। आपको भी खुश रखे।
4: हेलो सिमरन।
1: हेलो डार्लिंग।
4: सभी आप बात कर रही हो?
1: हाँ जी।
4: और ये सॉन्ग बहुत ही फेवरेट हुआ करता था मेरा उस जमाने में। दिल तो पागल है दिल दीवाना है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है।
1: क्या बात है यार।
4: And have a lovely weekend, Jio Binda.
1: You too, love. भाई बधाइयां मिठाइयां तो बहुत सारे पटाखे, और भी बहुत सारे वॉइस नोट्स आए हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि मुश्किल होता है सारे वॉइस नोट्स को ऐड करना, बट थैंक यू। हैप्पी वीकेंड।

देखो दोस्तों, वीकेंड का जोश जो है वो कम नहीं होना चाहिए। और पानी पीना है। और एक चीज और है जो कि मैंने आज आपको शो पे भी बोली थी और मैं अगेन जाते हुए भी वो चीज बोलने वाली हूँ कि खाना सोच समझ के खाइएगा। फूड पॉइजनिंग के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, सो जो भी खाइएगा फ्रेश खाइएगा, जो एक बार मंगा रहे वही खा लीजिएगा, और उसके बाद रखा हुआ एक दो घंटे ऐसे रूम टेम्परेचर वाला मत खाइएगा क्योंकि मौसम बहुत खराब है। अगर है बच गया खाना तो उसको फ्रिज में रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखो यार अपना, सैटरडे शाम को 5 बजे मिल ही रही हूँ। खांदे भी नेरो, ऐश कर दे रो, चेहरे दे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू, सो किलो।

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
1: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
0: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
1: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
2: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

listening to Radio Olive. The best DJ. This is Club Olive.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: जी हाँ भाई बहनों, झुमरी तलिया से मुन्नी की रिक्वेस्ट आई है, रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है।

0: इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।